सकते हैं, हमारे यहाँ तो लोग पास जो है वो यार मुल्क को माना चाहते हैं, तो वहां रहने की वजह लोगों के ये देखते हैं कि जहाँ आदमी रह रहा है उसको तमाम सहूलतें हासिल है, और पूछने से पता चलता है कि आप लोग यहाँ रहते हैं तो कहता है हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी की थोड़ी सी जमीन है वहीं अपना मकान बनाया हुआ है, हर सहूलत दी हुई है उसको। तो यहां से हमें एक पता ये चलता है कि जमीन तो एक ही तरह है, लोग भी एक तरह से है, लेकिन ये लोग तरक्की याफ्ता है, ये लोग चैन और सुकून से रह रहे हैं, और यहाँ पर लोग जो है सर्द मौसम होने के बावजूद ये इस तरह से रह रहे हैं। फिर खासकर जिन मुल्कों में देखते हैं कि बजायर जैसे अरबों के यहाँ तो यह है कि वहाँ तेल के कुएं उबलते हैं और उसकी वजह से बेशुमार दौलत है, यहाँ देखते हैं कि वो तेल के कुएं भी कहाँ कुएं नहीं है, और डेनमार्क का खास करके यहाँ क्या चीज है, ये कोई चीज नहीं है। तो यहाँ इसके बावजूद जो है ये इन मुल्कों में लोग बड़े खुशहाल हैं और सब कुछ है, तो उसके कारण हाँ अपने मुल्क में देखते हैं कि वहां जब सब चीजें हैं भी हैं, वो कुछ हालत नहीं है, इंतहाई पसमानदा और इंतहाई गरीब और करप्ट मुल्क दिन ब दिन नीचे जाता है, नीचे जा रहा था, तो फर्क कहाँ नजर आता है? तो फर्क मुसलमानों इसमें एक ही चीज नजर आती है कि यहाँ के जो लोग हैं जो तरक्की याफ्ता चैन सुकून से हमें नजर आता है कि यहाँ लोग वफादार हैं अपने मुल्क के, यहाँ अपने मुल्क के लोग वफादार हैं, और उनको जो भी अपना बजट का पैसा मिलता है जो होता है उस पैसे पर चीजें बनाते हैं, मुल्क को बनाते हैं। और हमारे यहाँ चीज जब ये नजर आती है कि वहाँ लूट मार के अलावा कोई चीज नहीं है, वहाँ हमारा क्या है कहने कि हमारे मुल्क के अंदर तो बहुत जखायर है, बहुत सारे मादनियात है, मौसम है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद इंतहाई जिल्लत पसमानदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं लोग आजकल जो है वहाँ। हर आदमी आज यूट्यूब पर कह रहे हैं कि हम अल्लाह तला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तला इस पाकिस्तान से हमें कहीं बाहर निकाल दे, और वहाँ हर आदमी वहाँ किसी बड़े से बड़े कहते हैं बाहर हम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ एक ऐसी गुठन है, कोई आदमी जो है वो अपने आप को महफूज नहीं समझता है। ये सारी चीजें हैं, ये बात लोगों को बुरी लगेंगे लेकिन ये हकीकत है, जाओ जाके देखो दुनिया में। तो नजर क्या आता है यहाँ, आप जब घूम गए तो आपको हफ्ते के सफर में आपको महीने के कहीं नजर नहीं आया कहीं रूट लगा हुआ है, कोई चोर यहाँ से भाग रहा है रूट लगा हुआ है जी, लोग बंद हो, सड़कें बंद हो गई है, कहीं कोई कर फर नजर नहीं आएगी, कहीं कोई चीज नजर नहीं आएगी, यहाँ तो आम तरह के लोग हैं, हर आदमी यहाँ कर रहा है। और आइए हमारे मुल्क के अंदर के जो है हाईवे बंद हो जाए रूट लगा हुआ है जी, वो रूट से कौन गुजर रहा है? वो चोर बदमाश जो अब मुल्क का खजाना है लूट करके वो जो है लूट रहा है, रूट उसके लिए लगा हुआ है और वो पैसे सारे बाहर लेके आ रहा है, और चंद खानदान हैं वहां, कुछ चंद इदारे हैं, चंद सियासी लोग हैं, वो उस मुल्क को दिन ब दिन तबाह करते जा रहे हैं। आज जब भी आप कितने 78 और 79 साल की बनाएंगे आप सालगिरह और आजादी बनाएंगे, किसकी आजादी आप लोग करेंगे सोचो। तो हम जो है इस मुल्क की जो है हमारे मुल्क की पसमानदगी और पाकिस्तान की तबाही बर्बादी वजह वो लोग नहीं है जो सियासी सियासत के अंदर हैं या चंद इदारे, वो तो वो मतलब है कि वो ठीक है लूट रहे हैं अपनी औलाद के लिए, सब कर रहे हैं, बाहर बना रहे हैं, कोई दुबई बना रहा है, कोई इंग्लैंड बना रहा है, कोई अमेरिका बना रहा है, उधर चले जाते हैं। असल मुजरिम वो लोग जो इनका साथ देते हैं, जो इन पार्टियों का साथ देते हैं, वो मुजरिम लोग हैं, जो इनके बावजूद इनको पता चलता है कि भाई ये लोग तो इस मुल्क को लूटने वाले हैं, ये एक इदारे का बड़ा अफसर है, बड़ी ताकत कुवत बने पर क्या करता है, औरों पर जुल्म कर रहा है, अपनी स्टिक उठाइए जुल्म कर रहा है वो, और वही जो यहाँ से फारिग होता है तो वो जो अमरीका घूमता रहता है या इंग्लैंड घूमता रहता है, दुबई घूमता रहता है। तो इन बदमाशों की, इन बदकिरदार लोगों की, इन चोरों के जो साथ देते जो पार्टी में, वो पूरे मुजरिम लोग हैं, वो जो से इस बात पर खुश हो जाते हैं कि मेरा फोटो के बन जाए, मैं अपने मुल्क में जाऊं तो कहीं जा रहे हैं फरहान साहब को मिलने के लिए गया हूँ, और फिर यहाँ आ जाए उनके चापलूसी करते हैं। तो असल में मुजरम का हुआ, मुजरम जो है वो हमारे लोग हैं जो इन लोगों की, इन मुजरमों की, इन चोरों की, इन बदकिरदारों की, इन खयानतु खाए लोगों की जो है इनके साथ तावन करते हैं और इनके साथ देते हैं और इनकी बुरी बातों को भी जो है वो अच्छा समझ के पेश करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर अब कश्मीर क्या है जो हमें जर रहा है, और ये आग कश्मीर की पाकिस्तान है इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है, ये वहां कौन ये कर रहा है ये? अगर आप जो है वो जो है गजा में वो इसराइल अगर वो करें वहां सारे लोग उसके लिए होते, और आज कश्मीर में आप पूरे 2 महीने होने वाले वहां क्या हो रहा है आपको कोई नजर नहीं आता है, लेकिन लोग पार्टियों के साथ देते। तो मुजरम असल में हमारे मुल्क की जो नतीजा ये निकाला, मैंने ये निकाला, और आप भी दुनिया गायब घूमे फिर

0: के पे कहीं किसी जगह पर जो आसमान से सोना नहीं बरसता है, ये जमीन कहीं सोना नहीं किसी को उगाती है ये, और इन मुल्कों में जहां रह रहे वहां को कुछ भी चीज नहीं है। तो यहाँ सर एक ही चीज है कि इन मुल्कों के जो लोग हैं वो लोग अपना हकूक लेना जानते हैं, वो उस लोग उस आदमी को उसको कभी वोट नहीं देते, उस सियासी पार्टी कभी नहीं देते जो उनके हकूक अदा ना करे। और हमारे यहाँ ऐसे मुजरिम है कि वो हर उस सियासी पार्टी के अंदर शामिल लगे, थोड़ा सा उसको जो है कोई चाय पानी उसको दे दिया, या उसको थोड़ी जो शाबाश दे दिया, फोटो आ गया। इस बुनियाद पर ये लोग उन मुजरिमों का साथ दे रहे। सोचो अभी जो हुकूमत के अंदर है, ये छोटे एक बच्ची है पंजाब की और ये कोई लड़का है उधर का उधर, ये लोग क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और इन्होंने क्या किया तो उसके लिए लोग आप इनके ये कर रहे हैं। तो वो लोग जो है मुजरिम, हमारे पता लिए चला कि मुजरिम असल पाकिस्तानी वो लोग हैं जो इन मुजरिमों का साथ देते हैं और बुराई पर नहीं बोलते, और बुराई को बुरे को अच्छा कहते हैं कि सिर्फ मेरे कबीले का है, मेरे खानदान का है, मेरी पार्टी का है, मेरा उसका है। इसकी वजह से ये अभी तो उसका खुद एक आदमी ये कह रहा है कि आइंदा 10 साल भी अगर इस तरह से रहोगे तो इस मुल्क तबाही बर्बादी की तरफ जाएगा, खुद वो बोल रहे हैं ये जो इस मुल्क से फायदा उठा रहे। देख लो लोगों, ये बातें को सियासी नहीं होती हैं, ये मजहब हमारा ये सिखाता है, मजहब हमारा दीन इस्लाम कभी नहीं सिखाता तो गुलाम बनकर रहो, मजहब तो आजादी सिखाता है, आप अपने हकों के लिए अपने इज्जत आबरू होना चाहिए। तो जहां पर जुल्म जहां भी हो उस जुल्म के खिलाफ आपका बोलना ये मजहबी फरीजा है, और आप अपनी पार्टी की वजह से अपने किसी के डर की वजह नहीं अगर बोल सकोगे तो ये अल्लाह ताला के मुजरिम होगे। तो हक के लिए बोलो अपने जो है मजलूम, चाहे वो किसी भी जमात से किसी मजहब तालक रखता हो, जो मजलूम के हक दे बोलना उसके लिए उसका साथ देना, उस जालिम के खिलाफ आवाज बंद करना हर तरीके से, ये हमारे दीन इस्लाम का ये फरीजा है ये। तो बहरहाल कुरान इसलिए कहता है कि दुनिया में जाओ घूमो फिरो और देखो तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारा मुल्क जो है क्यों पीछे है, तुम्हारा मुल्क क्यों पसमंद। और फिर इसमें यह भी ये अर्ज कर दूं कि सिर्फ ये नहीं कि हमारा मुल्क जो है वो एक पाकिस्तान पसंद, नहीं, हमारे यहाँ जो मुल्क असल में जो इस्तेमारी ताकतें कुव्वतें थी उन्होंने आकर के जो जहाँ मुल्क में लोगों की जो है वो बात चल सकती थी तो वहां बादशाह सिस्टम का काम कर दिया कि बादशाह लोगों की गर्दनें या पब्लिक थोड़ी सी डिवाइड करके बादशाह के हाथ में लोग गर्दनें दे, ठीक है। और जहां पर जो है लोग स्कूल ज्यादा थे तो वो फिर फौज के हाथ में दे दिए, जर्नलों के हाथ में दे दिए, चाहे ये जो है अलजजायर में देख लें या अफ्रीका के मुल्क जर्नलों के अंदर जो है वो दे दिए हैं। हमारे मुल्कों के अंदर ये है कि ये इस्तेमाली तादाद वो यही करती हैं, ये कि वो जर्नलों की पूरी सपोर्ट करते हैं कि ये जर्नल जो है अपनी लाठी की बुनियाद पर ये लोगों को काबू कर लेंगे और इस तरह से वो इस्तेमारी ताकतों कुव्वत के मंसूबे पूरे होते रहेंगे ये। और इस वजह से जितने ही हमारे जो जिनको इस्लामी मुल्क कहते हैं, असल में वहां मुसलमान रहते हैं, इस्लामी तो कोई नहीं है वहां पर, जो है जो हमारा मुल्क जो कहते हैं इस्लाम के नाम पर बना सा, आज सारे कुफर के कवानीन वहां पर पास हो रहे हैं, जहां पर मुसलमान बनने की पाबंदियां वहां लग रही है, क्या क्या हो रहा है सारा वो। तो ये जो मुल्क है असल में कि इस्तेमारी ताकतें कुव्वतें आज भी मौजूद है कि लोगों को कहीं बादशाह के नाम पर, गोदों को कहीं आर्मी के जनरलों के नाम पर इन मुल्कों को गुलाम रखती है। तो बहर एक मुसलमान को शोर होना चाहिए कि हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है, क्या हम सारी जिंदगी जो दूसरे मुल्कों में धक्के खाते पीते रहेंगे, लोगों को करते रहेंगे, अपने मुल्क के भी उसके लिए आप सोचेंगे। तो बहर अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तला हमारे मुल्क के हालात ठीक कर दे, हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह तला चैन सुकून ले आए, और चैन सुकून आएगा तब भी जब अल्लाह तला का निजाम आएगा। उसके लिए अल्लाह ताला हम लोगों को जो है मुर्दा जमीरों को अल्लाह ताला जिंदगी दे दे और जागें और अपने हकों की बात करें। और इस वक्त खास कर कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला उन कश्मीरियों को उनके जो बुनियादी हकूक हैं और जिन लोगों ने हकूक गसब किए हुए हैं इनको अल्लाह ताला सूझबूझ दे के उनके हकूक दो, मुल्क के अंदर इंतजार ना फैलाओ क्योंकि इंतजार फैला रहे हो। और बाद ऐसे बयानात हम पढ़ते हैं कि ऐसे शैतान लोग हैं जो जो लिखते हैं जो और जो मीडिया के अंदर काम करते हैं, ऐसे हालात बना रहे हैं कि मुल्क को टुकड़ा करने के लिए, जैसे वो ये शैतान वो लोग थे जिन्होंने एक मुल्क जो एक बाजू काट दिया, और जो मुल्क वो एक शैतान लोग हैं जो जो मीडिया के नाम से जर्नलिस्ट के नाम से वो पैसे किसी के लेते रहते हैं और ऐसी खबरें देते हैं कि लोगों की जहर साजी करते हैं कि कोई नहीं कश्मीरी अलहदा होगा तो क्या हो जाएगा, फलाना अलहदा कहते हैं, ये बातें ये इंतहाई गद्दारी की बातें होती है। लेकिन अजीब बात है लोग कौमियत के नाम से उसके नाम से बातें सुन जाते हैं, हम हैरान होते हैं ये कैसे लोगों के सूझबूझ है, कैसे लोगों की अक्ल है कि जो है अपने मुल्क को टुकड़े करने के लिए काटने के लिए तैयार हो जाते हैं इसके लिए। بہرحال مسلمانوں اپنے حقوق آپ کا لینا، بنیادی حقوق لینا، یہ آپ کا بنیادی اسلام جو آپ کو کہتا ہے کہ اپنے حقوق دنیا سے لو، اسلام میں تو یہ کہا ہے اسلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہوا ہے، کون کس کی جو ہے لوگوں کو غلام بنا دے، تو انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، اسلام انسان سے غلام ہے تو وہ بندہ ہے تو صرف اللہ کا جس نے پیدا کیا، باقی کسی انسان کو غلام اگر بننے پر راضی ہو جائے تو وہ پھر پست ذہن آدمی ہے اور کبھی ذلت سے نہیں نکلے گا. برہم ان کے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دے، اللہ تعالی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی جو ہے ہمارے اس حالات کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں کشمیر کے اندر، چاہے کسی کے بھی ہو، شہید جو ہے چاہے آرمی کا اندر ہو یا ہماری پبلک کے اندر ہو جو مارے جاتے ہیں جو لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے شہادت اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ سوچ بوجھ دے گا کسی مسلمان کا خون نہ حق نہ بہو، مسلمان کا خون نہ حق بہانا یا کسی انسان کا خون نہ حق جو ہے بہانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے تو ایک انسان نے تو سارے انسانوں قتل کر دیا. کاش یہ لوگ سمجھ آ جائے لوگوں کو بات کی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یہ ملا جلا، چلو شاہ جی آخری پھر میں کرتا ہوں دوبارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ آج اسپیشل پروگرام میں ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، ان سے آج بات چیت کریں گے۔ ہفتے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ ہم لوکل پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو لوکل باتیں ہی ہم نے کرنی ہوتی ہیں۔ تو شاہ صاحب، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجا کپور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر اور جتنے ناظرین ہیں سب کو السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ موسم باہر جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح، کوپن ہیگن میں تو اتنی تیز ہوائیں نہیں چل رہی، لیکن یولینڈ اور فیون میں دو دن سے بہت، اتنی آپ طوفانی تو نہیں کہہ سکتے لیکن طوفان جیسی ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور کوپن ہیگن میں اور ویسٹ آئن میں موسم جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اچھا ہے۔ بادل کی ٹکڑیاں آ رہی ہیں آگے پیچھے، آنکھ مجھولی ہو رہی ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی، اس لیے موسم جو ہے یہ کافی خوشگوار ہے۔ جی راجہ صاحب،
1: شاہ صاحب، موسم خوشگوار ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں۔ تو شاہ صاحب، کل بھی ایک آندھی چلی، سیاسی آندھی چلی، آپ پروگرام میں، میں بھی موجود تھا، آپ بھی موجود تھے، تو کچھ باتیں ہوئیں جس میں لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہیں جی کیا ہوا شاہ صاحب۔ تو شاہ صاحب، کل کیا واقعہ ہوا؟
2: دیکھیں جی، کل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل تحریک کشمیر نے ایک کافی بڑی میٹنگ کال کی ہوئی تھی، جہاں پیچیدہ پیچیدہ جو مختلف پارٹیوں کے اور مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے وہاں پہ مدعو کیے گئے تھے، جن میں جرنلسٹ لوگ بھی شامل تھے، جہاں آپ خود ایز اے کمیونٹی چیئرمین، ایز اے جرنلسٹ آپ وہاں پہ خود تشریف رکھ رہے تھے، امبیسڈر صاحب تھے وہاں پہ پاکستانی، ہمارے امبیسڈر صاحب، اور اس کے ساتھ ان کے نائب جو ہیں وہ پیچیدہ پیچیدہ لوگ تھے۔ تو کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور کشمیر کے اوپر کس طرح کی بات ہوئی ہے، جیسے کہ ہر سال ہر سیزن میں 5 اگست آتا ہے یا کوئی ایسا دن آتا ہے تو کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آتی کہ اس کا لائحہ کیا ہے، اس کا اگلے آنے والا مستقبل کیا ہے۔ تو میں اب زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دوں گا کہ لوگوں کو علم ہو، لیکن میں نے آج خود ایک یہاں وائس آف کشمیر کے نام پر، وائس آف کشمیر ڈاٹ ڈی کے نام پہ ایک تحریک ابتدا کی ہے، جس میں ہم اردو، انگلش اور ڈینش زبان کے اندر، کیونکہ اس وقت ڈنمارک جو ہے 1 اگست سے یہ پریزیڈنٹ بنا ہے، فورمین بنا ہے، ہماری زبان میں فورمین ڈنمارک میں کہتے ہیں اور انگلش میں اور پاکستانی زبان میں پریزیڈنٹ اور صدر کہا جاتا ہے، یہ یونائٹیڈ نیشن کی جو اسمبلی ہے اس کے یہ صدر بنا ہے۔ تو ہم یہاں پہ اس مہم میں مظلوم کشمیریوں کی آواز بنیں گے، ہم ان کو لکھیں گے، کیونکہ ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہماری جماعت اس طرح کی کوئی آواز اٹھائے گی، لیکن ہم رولز اینڈ ریگولیشنز، دنیا بھر کے رولز اینڈ ریگولیشن کا احترام کرتے ہوئے ہم بھارت کے خلاف ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کر لیا ہم نے کہ ہم اس کے اوپر لکھتے رہیں گے اور اس آواز کو بڑھاتے رہیں گے،
1: قانون قاعدے کا احترام کرتے ہوئے۔ جی شاہ جی،
2: جی بالکل بالکل جی، ہم نے کہا جی کہ ہر ملک کا، ایون ڈنمارک کا، اور یہاں کے رہتے ہوئے ہم لوگوں کو، اپنے لوگوں کو نہیں بلکہ ہم ڈینش لوگوں کو یہ انفارمیشن ان کی زبان میں مہیا کریں گے
1: کہ بھائی
2: اویئرنیس دیں گے کہ کشمیریوں کو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان کی باقاعدہ پکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کریں گے، اور ہم ایک پرامن، جو ہمارے دین کا سب سے بڑا حصہ ہے، कि अमन इस्लाम फैला ही अमन से था और मोहब्बत से, तो हम अमन की आवाज देंगे। और इसके साथ हम अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को जो है मुअत्तल कर दे, वहां से जान छुड़ाएं, क्योंकि जब तक हम कॉमनवेल्थ सिटीजन हैं तो हम एक कलोनी की हैसियत रखते हैं और हम कश्मीर की तरफ कभी नहीं जा सकेंगे। लोगों को ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब गिलगित बलिस्तान और ये दूसरा आजाद कश्मीर का हिस्सा जो है, ये मुजाहिदीन पाकिस्तान और पाकिस्तान के वो चंद फौजी ऑफिसर जिसमें मेरे वालिद साहब उस वक्त फुल लेफ्टिनेंट थे, तो ये इन्होंने जो कब्जे किए, तो उसके बाद अंग्रेजों ने, क्योंकि हमारा जो आर्मी चीफ था वो भी जनरल इंग्रेज था, और इसे उसने कायदे आजम मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह की बात मानने से इनकार कर दिया, और अंग्रेजों ने जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के अंदर अपनी अफवाज जो हैं वो इस बहाने से उतार दी कि हम भारत ने इसकी अपील की है, जिसका आज तक कोई रिटर्न सबूत सामने नहीं आया। तो ये जंग जो है इसको रोक दिया गया और इसमें यह फैसला किया गया कि जो कश्मीरियों का फैसला होगा कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये फैसला हुआ था आजादी के वक्त कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बकायदा अंग्रेजों के साथ ये मुआहदा किया था कि कश्मीर जो है वो शाहराग है और शाहराग के बगैर पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकता, ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन भारत ने अंग्रेजों की शह पे इस पे भी कब्जा कर लिया और आज तक इसको जो है वो इसकी वायलेशन हो रही है और इसके ऊपर कब्जा उन्होंने बरकरार रखा है। तो इसके ऊपर हम काफी जो है वो
1: अच्छा,
2: लिखना शुरू
1: ये
2: भी
1: बात
2: कर
1: आप
2: दिया।
1: करना चाहते थे, ये आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे अपने लोगों को।
2: जी बिल्कुल, इसलिए कि जिन
1: इसलिए आपको
2: लोगों
1: मौका
2: में
1: नहीं दिया जा रहा था।
2: देखे मौका, हाँ आपने ये बात की, मैंने अपने मौके की बात का मुझे कोई ना दुख है ना गम है। मेरा ये जो मैंने प्रोटेस्ट किया था वो ये था कि जब आप लोगों को बुलाते हैं और लोगों के आप लीडरशिप को देखें कि वो उन्हीं लोगों की वजह से हमारे हम सब लोग लीडर बनते हैं, और अगर उनमें बेइंसाफी की जाए तो उसके ऊपर इंसाफ की आवाज उठनी चाहिए। और तरीके कश्मीर हमेशा का जो फार्मूला लेके आ रही थी उस चंद बंदों ने, मैं इसका इल्जाम ना मियां मनीर पर लगाऊंगा और ना उनके सदर पर लगाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो उनका स्टेट सेक्रेटरी था उसने हसबे आदत, वो किसी भी नून लीग की हो, तंजीम किसी का भी हो, तो वो हमेशा इसी तरह करता है। तो इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वो मैंने किया कि आम आवाम को आम कॉकरेज की तरह नहीं सोचना देखना चाहिए, बल्कि जो जो हमारे साथी थे वो हमसे बड़े लीडर थे और उन्हीं की वजह से हम आज आपको लीडरान समझते हैं।
1: तो
2: तो
1: शाह
2: जब
1: साहब, हम
2: तक
1: कह सकते हैं कि आपको यही वॉइस ऑफ कश्मीर बनाने की वजह बनी।
2: जी बिल्कुल, मेरी ये तमन्ना थी कि हम लोग बजाय डेमोन्स्ट्रेशन करने के, बजाय हम बातें करने के, हम लोगों को इस चीज पे राजी करें कि वो मजलूम कश्मीरियों के साथ दीनी तौर पे अपना इतिहाद करे और उनकी आवाज बने। यहाँ पे बच्चे बड़े बूढ़े जो भी है इस प्लेटफॉर्म पे हफ्ते में कम से कम 4-5 दफा इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे, हम एक्स पे जाएंगे, हम पूरे सोशल मीडिया पे जाएंगे, हम वहां पे आवाज इतनी जबरदस्त और इतने पूरे शोहदा के साथ हम ये बात करेंगे कि हमारे जो बच्ची है, जो हमारे बच्चियों बहनों के साथ वहां रेप हुए हैं, जो ज्यादती है वहां पे भारतीय फौज कर रही है, और जिस तरीके से इस जुल्म के अंदर पूरा यूरोप पूरी इंसानियत खामोश बैठी है, हम उसके ऊपर आवाज करेंगे और इस ताकत को हम सामने लेके आएंगे। और फिर हम हमेशा पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो या पाकिस्तान का सोसाइटी हो या आपके एज ए कम्युनिटी चेयरमैन के जैसे कोई भी तंजीम हमें बुलाएगी तो हमारे जो वर्कर्स हैं या हमारे जो बंदे जो इस तंजीम में शामिल हो रहे हैं वो सबके साथ आपके साथ होंगे
1: शाह साहब,
2: और
1: आप
2: इंशाल्लाह
1: माशाल्लाह
2: ताला।
1: बड़े एक्टिव हैं, बड़ा एक्टिव रोल अदा करते हैं, मीडिया पर आप नज़र रखते हैं और लोगों को अपनी राय भी देते रहते हैं, हर हफ्ते में 2-3 बार लेटेस्ट चीज़ें भी बताते रहते हैं। शाह साहब आपसे सवाल है, आपसे बड़ा ज़िंदगी का आपके पास तजुर्बा है। शाह साहब जब भी मजलूमों की बात की जाती है तो हमारा जो अख्तितम होता है वो खाने पीने पर होता है।
2: जी ये बिल्कुल गलत चीज है, खाना पीना हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि वही जो पैसे हैं वही जो मजलूम लोगों की आवाज है उनके
1: बिल्कुल
2: उनके जो मीडिया पे हम खर्च कर सकते हैं, उनको उनके इश्तेहार बनवा सकते हैं, हम ऐसे मीडिया हाउसेज को
1: डोनेट
2: लिख
1: कर
2: सकते
1: सकते
2: हैं
1: हैं,
2: जो डोनेट कर सकते हैं उन लोगों को, ताकि ये लोग जो हैं हमें एहसास हो कि गुलामी गुलामी क्या चीज है, हमें इस कम से कम उनकी उन माओ बेटों की बेटियों की अजमत को देखना है कि जिनके बच्चों के सामने उनकी बेदर्दी से उनकी अजमतों को लूटा जाता है, तो हम इसके ऊपर बकायदा सबूत है। मैंने काफी 55 साल 56 साल ये देखा है, उससे पहले इंग्लैंड में भी ये देखा है कि इंग्लैंड में इतने ज्यादा लोग होने के बावजूद ये गोरों को इस चीज पर कायल नहीं कर सके। इसी तरीके से हम 55 साल से डेनमार्क के अंदर बहुत ज्यादा दोनों सोसाइटियों की कश्मीरियों की यहाँ बहुत ज्यादा खिदमात है, लेकिन डेनिश अवाम के पास इनकी इंफॉर्मेशन जीरो जीरो होने के बराबर है। और हमें ये चाहिए कि जब फेसबुक पे सोशल मीडिया पे हर जगह पे हम लिख सकते हैं, ये कॉस्ट भी नहीं करता, और आपका मीडिया जो है ये और दूसरे जो मीडिया है ये ओपन है, खुसूसी तौर पे आपका मीडिया जो है ये 24 आवर्स चल रहा है। इसके ऊपर अगर हम डेनिश के अंदर बात कर सकते हैं तो सुनने वाले जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या जो खेस का रहे हैं उन्होंने अगर अपने रेडियो या अपने वॉइस को खोला हुआ है तो वो डेनिश आवाम सोच सकती है कि हम लोग कश्मीर के बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है, कौन सा लीडर मैसेज देना चाहता है। तो ये हमारा जो वॉइस ऑफ मैसेज है .dk के इसके ऊपर जरूरी नहीं कि आप इस तंजीम के मेंबर हैं तो आप अपनी जो है
1: तो शाह साहब आप बात कर रहे हैं,
2: वो
1: कल
2: रिकॉर्ड करेंगे।
1: शाह साहब आप बात कर रहे हैं तो कल हमें कमी महसूस हुई, कश्मीर सोसाइटी की कोई जो है बंदे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे।
2: देखिए ये सवाल आप उनसे कर सकते हैं, ये आपका राइट है, एज ए जर्नलिस्ट लोगों ने जो बातें की हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात कर लेना इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे और उनका हम
1: शाह
2: बारा
1: साहब
2: सुनना।
1: देखे ना, आप देखे आप वहाँ मौजूद थे, एनालाइज कर रहे थे, आप जो को हर चीज को देख भी रहे थे, तजिया भी कर रहे थे। शाह साहब बड़ी जो है मदलल तकरीर थी अपना पाकिस्तान सोसाइटी के सदर चौधरी विलायत खान साहब की, बड़ी अच्छा बयान किया अब सफीर मोहतरम शुएब सरवर साहब ने, इसी तरह राजा फरहाद की बड़ी जो है जू मैंने जो है वो तकरीर थी, बड़ी जज्बाती तकरीर नहीं थी लेकिन मैंने के लिहाज से बड़ी तकरीर थी, बड़े मैसेज थे उनके। इसी तरह फ्री ग्रोने के जो अशम हैं जिसके जिस पार्टी के चेयरमैन हैं मलिक सिकंदर सदीक, उनके नायब आए हुए थे आगा अशम, उनकी जो पैगाम था बड़ा अच्छा पैगाम था, और भी मुजीब साहब ने भी बड़ा अच्छा पैगाम दिया और लोगों ने भी पैगाम दिए। तो शाह साहब जो कमियां रह गई हैं तो आप इंशाल्लाह वो कमी भी दूर हो जाएगी।
2: ये बिल्कुल ये कमी जो है ये वॉइस ऑफ कश्मीर .dk जो है ये प्लेटफॉर्म बनेगा, इसके अंदर जो है लोग अपनी वॉइस मैसेज दे सकते हैं, इसका किसी एक से भी पूछने की इजाजत नहीं, आप कश्मीर के बारे में बोले, कश्मीरियों की आजादी के बारे में बोले, लेकिन एक चीज इसके अंदर शर्त है वो ये है कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर है पाकिस्तान, कश्मीर है शाहराग पाकिस्तान, ये हमारा स्लोगन है, इसके बगैर जो है वॉइस ऑफ कश्मीर जो है ये दूसरे किसी स्लोगन को जो है या किसी दूसरी आवाज को हम नहीं लेंगे, लेकिन आप कश्मीर के बारे में जो भी हम दर्दी रखते हैं, जो भी आप कश्मीर के बारे में हमसे गलती होती है, किसी लीडर से गलती होती है, कोई भी लीडर आप हो एज ए चेयरमैन कम्युनिटी फोरम आप हो, एज ए जर्नलिस्ट पाकिस्तान सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो, दूसरी कम्युनिटीज पार्टी कोई भी हो, वो आकर इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है कश्मीरी अवाम की। देखें हम इस उम्र के हिस्से में पहुंच चुके हैं कि हम कानूनों की वायलेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी आवाज जो है उसको और अपने कलम की ताकत से हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, और ये तो सबसे जरूरी
1: कहने
2: है।
1: का मतलब यह है कि हमें यहाँ की सियासत की तरफ या दुनिया की सियासत की तरफ नजर होती ही होती है सबकी, लेकिन सबसे पहले यहाँ फोकस करना चाहिए।
2: जी बिल्कुल, आपने देखा है एज ए कम्युनिटी चेयरमैन आपने कल इत्तफाक किया था कि किसी डेनिश को इनवाइट नहीं किया गया, किसी गैर मुल्की को इनवाइट नहीं किया गया, तो हम किसको मैसेज दे रहे हैं, हम किसको बता रहे हैं कि हम क्या आज क्या करने जा रहे हैं। आज 5 अगस्त है, ये शुक्र है उनका कि चेयरमैन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इजलास बुलाया, लेकिन उसके अंदर कमी थी, उसके अंदर यह होना चाहिए था कि मुख्तलिफ इलाकों के डेंचों को बुलाया जाता, वहां वो वर्कर ही क्यों ना होते, हाँ वो आम डेनिश आदमी क्यों ना होता, कम से कम उसको डेनिश आवाज में ये पैगाम मिलता या इंग्लिश में ये पैगाम दिया जाता कि हम किस मकासद के लिए इकट्ठे हुए हैं, कश्मीरियों तक हमारी आवाज, हम आपस में जैसे आपने ये सवाल उठाया खाया पिया और मिट्टी डाल के हम चले गए, तो यही हुआ कि हमने कल जो भी उनकी मेहनत थी उसको जाया किया, खाया पिया और चले गए, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इससे फायदा यह है कि हम हर प्लेटफॉर्म पे इस आवाज को इकट्ठा करें, इस आवाज को लेके चलें, ताकि कल को जो हमारा दुश्मन है, जो जो दुनिया भर की वायलेशन कर रहा है इंसाफ को के टुकड़े टुकड़े धजे उड़ा रहा है भारत, हम उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे यूरोप में मुहैया करें कि वो खुद बहुत शर्मिंदा हो जाए।
1: जहां भी दुनिया में वायलेशन हो उस पर बात की जाए।
2: बिल्कुल जी, जहां पे भी आप वॉइस ऑफ कश्मीर के अंदर जहां पे भी जुल्म हो रहा है, जहां पे भी देखे हमें इस्लाम, इस्लाम में यही चीज दिखाएगी। इस्लाम फैला क्यों, इस्लाम फैला ही इस बात पे था कि इस्लाम के अंदर जो नरम गोई सच्चाई और इंसाफ की ताकत थी उसको देखते हुए रोमन अम्पायर्स और ये पर्शियन अम्पायर्स जो थे और बड़ी बड़ी ताकतें जो थी उनके अवाम ने इस्लाम की मदद की और हम लोगों ने फतह बगैर गोलियां चलाए फतह हमें हासिल हुई, तो इस्लाम जो है ये हमेशा दुश्मन के साथ भी अग्रीमेंट करके उसके उस अग्रीमेंट पे कायम दायम रहने वाला है, और हम यही चाहते हैं कि कश्मीरियों की अब आवाज का वक्त आ गया है, अब हमें ये भूल जाना चाहिए कि इस पार्टी का कौन चेयरमैन है कौन नहीं, जो भी बंदा इसके अंदर ज्यादा काम करेगा।
1: आप मेहनत हमेशा करते हैं, जहां भी आप जाते हैं आप मेहनत करते हैं, तो लोगों ने आपको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे भी मालूम हो रहा है कुछ बातें, मुझे रात को भी पता चली, दिन को भी आज पता चली, सुबह से मुझसे यही पूछा जा रहा था, तो अच्छा किया आपने इस बात को जो अपनी इस वॉइस ऑफ कश्मीर को ओपन कर दिया।
2: जी बिल्कुल, ये हमारी जरूरत है, वॉइस ऑफ कश्मीर जो है ये किसी भी सोसाइटी पे किसी भी तंजीम पे तनकीद नहीं करेगा, बल्कि हम एक ऐसा तमीरी काम करेंगे कि जो कश्मीरियों की आवाज है वो डेनिश जबान में, इंग्लिश जबान में और दूसरी जबानों में जो जो लोग माहिर हैं वो इस इंटरनेट को, इस फेसबुक को, इस चीज को आगे बढ़ा के जाएंगे। और याद रखें कि राजा गफूर साहब आपका बहुत बड़ा अमल दखल है इसके अंदर, और खालिद भट्ट साहब जो है उडनसे वाले उनका भी बड़ा अमल दखल है कि जिसकी वजह से हमने ये वॉइस ऑफ कश्मीर .dk जो है इसको इसकी बुनियाद रखी, क्योंकि वाहिद एक ऐसी चीज है, आपका मीडिया एक ऐसी चीज है कि जहां से हम बात कर सकते हैं और हम लोगों तक अपना पैगाम रसानी कर सकते हैं, हमें किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं, किसी के साथ कोई जादारा नहीं, आजादारी नहीं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे
1: चाहते हैं, सारी दुनिया यही चाहती है कि जेन्युइन इंफॉर्मेशन आए। देखे ना, अब सफीरे पाकिस्तान जब सबको दावत देते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको मौका देते हैं, तो वो भी अपना काम जो है वो बड़ी खूबी से कर रहे हैं, तो उनको ये क्रेडिट जाता है, तो शाह साहब आपको भी क्रेडिट जाता है इस तंजीम का आपने आगाज किया।
2: जी बिल्कुल, आपने कई दफा मेरे साथ ये इस बात पर डिस्कशन किया है। इसके अलावा चौधरी विलायत ने काफी दफा कहा कि कल उनकी तकरीर में से भी ये चीज हो रही थी कि जो हम एक्टिव लोग हैं, जो हम लोग जानते हैं, हमें ऐसा
1: शाह साहब हमने तो उनकी
2: तरीका।
1: तकरीर सारी जितना था उनका बड़ा मुदल्लल उनका जो तकरीर की शक्ल में था, खिताब की शक्ल में था, वो तो हमने सारा लाइव कर दिया है।
2: ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन सुनने वालों को, समझने वालों को ये चाहिए कि अब हर चीज जो है वो चौधरी वलायत खान जो है वो उसकी जो पाकिस्तान सोसाइटी है वो सियासी पार्टी नहीं है, और वो एक पार्टी है जो सब सियासी पार्टियों को साथ लेके चलती है, सबके साथ चलती है। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग सियासी पार्टी भी हैं, हम लोग दूसरे तरीकों से भी चलते हैं, लेकिन जो ये वॉइस ऑफ कश्मीर है,
1: कश्मीर
2: डॉट डी के है, इसके ऊपर हमने सिर्फ वो बातें करनी है कि जिससे हमारे डेनमार्क के रहने वाले डेनिश शहरी जो हैं वो बड़े अमन से, बड़े इत्मीनान से बात करें। ठीक है, उनके अंदर भी कोई ऐसे
1: पॉजिटिव
2: होंगे
1: चेहरा
2: कि
1: सामने
2: जो
1: आना
2: क्रॉस
1: चाहिए।
2: क्वेश्चन, जी बिल्कुल, वो क्रॉस क्वेश्चन हमें जरूर करेंगे कि भाई आपके पास इस बात का क्या बेवीस है, सबूत है, तो वो हमें बड़े आराम से उनको एक दूसरे को जिसके पास
1: शाह
2: भी
1: साहब
2: सबूत
1: आपने बड़ा
2: हुआ
1: अच्छा
2: वो
1: किया,
2: देगा।
1: बता दिया, तो इंशाल्लाह अगली बार आपसे मुलाकात होगी, मीडिया पे तो होती रहेगी, अगली मुलाकात आपसे पार्लियामेंट में होगी। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी और आपने बड़ा अच्छे तरीके से हर चीज़ को जो है वो कवर किया।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मुझे दावत दी और मेरी हौसला अफजाई की कि मैं इस पे आऊं, और मैं इसके पीछे जो तीन बंदे खड़े हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक आप हैं, एक खालिद भट्ट है, और दूसरा पाकिस्तान सोसाइटी का सदर विलायत खान है। मैं और अपने उन सब साथियों की, उन हर बंदे की मैं इज्जत एहतराम करता हूँ जिन्होंने हमें ये हमारी बातें आराम से सुनते हैं और तमीज से हमारे साथ अगर कोई
1: अभी भी लाइव सुन रहे हैं शाह साहब, कितना
2: अख्तलाफ
1: बढ़िया।
2: राय भी होता है तो उसको सुनता है। जी अल्लाह
1: शाह
2: अल्लाह
1: साहब
2: खैर
1: आपका
2: करे
1: बहुत
2: सबकी,
1: शुक्रिया,
2: लेकिन
1: इंशाल्लाह
2: हमारा
1: आपसे
2: एक ही
1: मुलाकात
2: मकसद
1: होगी।
2: है। जी अल्लाह हाफिज, जी अल्लाह हाफिज,
1: अल्लाह हाफिज।
2: पाकिस्तान जिंदाबाद,
1: जिंदाबाद
2: कायदे आजम जिंदाबाद,
1: जिंदाबाद
2: अल्लामा इकबाल जिंदाबाद,
1: जिंदाबाद।
2: और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम कश्मीर की आवाज हैं और सदा आवाज देते रहेंगे, बोलते रहेंगे और लिखते रहेंगे।
1: लेकिन
2: अल्लाह
1: यूएनओ की
2: हाफिज।
1: कराधातों का भी हम एहतराम करते हैं।
2: जी बिल्कुल हम करते हैं, और इसलिए क्योंकि इस वक्त सदारत जो है वो डेनमार्क के पास है, इस वक्त एफएन का जो सदर है वो डेनमार्क है, और हम डेनमार्क को लिखते रहेंगे, यहाँ के अब लोगों में जितनी तेजी से आवाज हम फैलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका रिस्पॉन्स हमें मिलेगा।
1: शाह जी
2: अल्लाह
1: अफवाजे
2: हाफिज, जी
1: पाकिस्तान।
2: जिंदाबाद।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: चाहिए कि 10 मिनट की वॉक करके आना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कभी ये भी सोचा करें कि 50 साल पहले वो 5 5 मील भी चला करते थे। कभी ये भी सोचा करें कि 50 साल पहले उनको ना, ये हम पाकिस्तान से है ना, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उनको ये सहूलतें नहीं थी। जब सहूलतें हैं तो सहूलतों का एहतराम करें, और ताकि दूसरों के लिए मसाइल ना पैदा हो। जैसे आपने बताया रीमा थी वहां पे, नीचो है, पेट्रोल पंप है, लोगों को वहां पे थोड़ी डिस्टर्बिंग हुई, लेकिन देखें ना कल वो क्या कहेंगे। कहेंगे जी देखें इन लोगों को 50 50 साल हो गए हैं, अभी तक इन लोगों को अकल नहीं आई, ये अपनी गाड़ी सही तरीके से पार्क नहीं कर सकते, इन्होंने बाकी कर उनका क्या एहतराम करना है। मैं तमाम अपने बहन भाइयों से गुजारिश करूंगा, जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, जब भी कहीं जाए, अपनी कोशिश करें, अगर थोड़ी सी दूर भी जगह मिले तो गाड़ी की पार्किंग जो है उसको सही तरीके से करें, ताकि जो दूसरा बंदा है उसको तकलीफ ना हो। हम देखते हैं मस्जिदों में कोई जनाजा हो, जुम्मा हो, या कोई ईद का फंक्शन हो, शोर डला होता है स्पीकर पे, गाड़ी अटैंग जी गाड़ी, हमें पता नहीं कहाँ बकल आएगी, ये मुझे नहीं समझ आ रही। हम एक एक आधी दहाई से ज्यादा इस मुल्क में रह रहे हैं, और कानून का एहतराम करते हुए हमें पता नहीं क्यों शर्म आती है। हमें कानून का एहतराम करना चाहिए, और जो दूसरे लोग हैं उनका खास ख्याल रखना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए।
1: मजीब साहब, आपने जिक्र किया हमें कब अकल आएगी, हम बड़े दर्द माना अपीलें भी करते हैं, हमें बड़ा फिक्र होता है फ़लस्तीन का, हमें बड़ा फिक्र है कश्मीर का, जहाँ भी दुनिया में जुल्म होता है मुसलमानों को बड़ा फिक्र होता है, ह्यूमन राइट्स की जहाँ भी वायलेशन हो उस पर प्रोटेस्ट करनी चाहिए। मजीब साहब, आप सियासतदान भी है, मुल्क आलते जंग में है, कश्मीर के हालात आप देख लें, धरने हो रहे हैं, शशातें हो रही हैं, कत्लो गारत जहाँ भी दुनिया में हो रही है, फ़लस्तीन का हाल आप देख लें पिछले कितने अरसा दराज से, ईरान के हालात देख लें, जहाँ भी होते हैं दुनिया में, जहाँ जहाँ भी दुनिया के किसी हिस्से में, तो मुजीब साहब हमें कौन सी खुशियाँ चढ़ी होती है, हम ढोल भी मारते हैं, याशी भी करते हैं, और उसके बाद शाम को सोशल मीडिया पर बैठ कर जनाब रोना रोना शुरू कर देते हैं, जनाब फ़लस्तीन के हक में, कश्मीर के हक में, आगे पीछे दूसरे जगहों पर, ये क्या है?
0: मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा जी, हमें, मैं इसलिए कहा कि हमें आज तक, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें अकल नहीं आई, ना तो हमारे पास कोई दीनी तालीम है, ना हमें हमारे पास दुनियावी तालीम है। ये दोनों तालीम जिस वक्त तक इंसान के पास मुकम्मल ना हो, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। मेरा ये मेरा तजिया, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। अगर मेरे पास दीनी तालीम नहीं है, मेरे पास दुनियावी तालीम नहीं है, मैं अच्छा इखलाक का मालिक नहीं बन सकता, मैं अच्छा इंसान नहीं बन सकता, मैं एक दूसरे का एहतराम नहीं कर सकता, मैं एक दूसरे की तकलीफ को देख नहीं सकता। देखें जी, जो आपने कश्मीर, फलस्तीन या दूसरी जगहों का जिक्र किया है, वो हमारे भाई बहन भाई हैं, उनकी तकलीफ हमें है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चले देखें, क्योंकि जिन मुल्कों में हम रहते हैं, उन मुल्कों में हम इतने ज्यादा डिप्रेशन में है, सारे लोग काम काम काम और भागो दौड़, फैमिली प्रॉब्लम, इधर इधर का काम, उधर का काम, तो उसमें थोड़ी सी इंजॉय हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जरूरी यही है कि मैं यही कहूंगा कि एक दूसरे की तकलीफ का भी ख्याल रखें, एक दूसरे की तकलीफ का एहसास करें। एहसास करेंगे तो तभी बात होगी ना। लेकिन जब तक दीनी और दुनियावी तालीम राज साहब नहीं आएगी, आप भूल जाए कि हम, क्या हमारे अंदर इखलाक आ जाए, हमारे अंदर एहसास आ जाए, हमारे अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए कि जिसको हम जो है ना अपना के दूसरों को खुश कर सकें।
1: शाह साहब, आपने बात सुनी, शाह साहब बात को आगे लेकर चलते हैं, क्या ये डबल मुराल है सारा कुछ, या कि हम सीखना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ सहूलियात या कानून कायदे के सुराख ढूंढते हैं कि किस तरह इस सुराख में से अपना हिस्सा निकालें?
2: नहीं, मेरा ख्याल में कि अगर हम देखें तो हम फ्रस्ट्रेशन में हम खुद पड़ चुके हैं। मैं सीधी बात करूंगा इसमें, मैं खुद अपना तजिया करूंगा कि उम्र के इस हिस्से में जब मेरे अब बान बान जो है वो पोतिये पोते दूसरे जो है वो माशाल्लाह कद काट काटना शुरू निकालना शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर कोई बच्चा अपनी सोच के मुताबिक कोई बात करना चाहता है तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है, या मुझे भी मैं उसकी बात को पूरी तरीके से समझ नहीं सकता। तो ये चीजें जो है ये बिल्कुल अपना मुजीब भाई ने बहुत वाजह तौर पर कहा कि हमें दीनी तालीम से भी हम नाशना है और दुनियावी तालीम से भी हम नाशना है, और ये जब तक हम इनको सही तरीके से ढूंढ नहीं सीखेंगे, नहीं इनकी बुनियादें नहीं समझेंगे, हम कभी भी होंगे इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं, जिस जो हमारा अब हमारा नहीं, हमारे आने वाली नस्ल जो इसमें पैदा हो चुकी है ये उनका मुल्क है, हमने अब तक इनको और अपने आप को एजुकेट नहीं किया। मैं अपने 90% दोस्तों की बात करता हूँ कि जो जिस महफल में भी बैठेंगे वो अपने गांव की बात करेंगे, अपने इलाके की बात करेंगे, वो पाकिस्तान की बात करेंगे, वो पाकिस्तान की

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: not the system, but it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।